ஆயிரன தினம் அது வளர்ந்தது யுத்தத்தால், அதோ அதோ விடியது சத்தத்தால், அராஜகம் அழியது ரத்தத்தால், அதோ தலை உருளுது சொர்க்கங்கள், இதோ இதோ தெரியுது துடிக்கிது புஜம், ஜெயிப்பது நிஜம். Team the tacky, the tacky, team the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the tacky, the

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार?